0: कि सबसे पहले किसने हमें मैसेज किया है, कौन बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। प्यार अली भाटिया हैं यहाँ पर और जुमा मुबारक आप सबको कहा है, ये पहला सा मैसेज। दूसरा, हैप्पी फ्राइडे, जुमा मुबारक। माना जनाब ने पुकारा नहीं, अच्छा क्या मेरा साथ भी गंवारा नहीं। करती हूँ, ये भी आपकी फरमाइश पूरी करनी है तो कर लेंगे। लेकिन रूपल, इससे पहले कुछ पायल भी कह रही है, उसको भी तो सुनना है ना। सलमा ने भी कुछ कहा है, उनकी बात सुने।
1: बेमिसाल अंदाज लिसनर्स, दोस्तों को मेरा आज का पैगाम। दोस्ती का शुक्रिया कुछ इस तरह अदा करूं, आप भूल भी जाओ तो मैं याद करूं। दोस्ती ने बस इतना सिखाया है मुझे कि खुद से पहले आपके लिए दुआ करूं। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 1447 का फाइनल जुमा मुबारक। सलमा अहमद किसुमो।
0: 1447 हिजरी है, समझिए कैलेंडर जो इस्लामिक कैलेंडर है। बहुत अच्छे सलमा। और यहाँ है तुम्हारी ये जो हरीश वरसानी, गुड मॉर्निंग परवीन जी। और वो कहते हैं कि तुम्हारी दुनिया में हम जैसे हजारों हैं, तुम्हारी दुनिया में हम जैसे हजारों हैं, हम ही पागल थे जो तुम्हें तुम्हें पकड़ इराने लगे, तुम्हें पकड़ इतराने लगे। ओके, मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन हम ही हैं कि तुम्हें पाकर, ओ तुम्हें पाकर, क्या बात है। समझ फिर से, तुम्हारी दुनिया में हम जैसे हजारों हैं, हम ही पागल थे जो तुम्हें पाकर, पकड़ कर। देखा, जब आप उर्दू को इंग्लिश में लिखते हैं, हम ही पागल थे जो तुम्हें पाकर इतराने लगे। हम जैसे तो काफ़ी थे आपकी महफिल में। अमीर अली राना, आपने कहा है कि परवीन जी जुमा मुबारक टू यू एंड ऑल। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो फिर दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। क्या बात है, अमीर अली राना।

0: nice with the perfect blend of your favorite music. East FM, Asian Mix.
1: आपका पसंदीदा संगीत समय सिर्फ ईस्ट एफ एम पे. ब्रिस्टल से नजू यूनाइटेड किंगडम में है. कहते परवीन जी टू यू एंड द लिस्नर्स अराउंड द ग्लोब, जुमा मुबारक. हैव अ फैबुलस जुमा एंड अ फैंटास्टिक वीकेंड. बहुत बहुत मेहरबानी नजू ब्रिस्टल से. और सना हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी. कहते हैं फिल्म गवार थी, 1970 की रिलीज है. मनोज कुमार एंड वजंती माला, इनकी भी जोड़ी अच्छी थी, वजंती माला और मनोज कुमार. ओके, बहुत अच्छे. आगे चलकर समय पहले तो एक ब्रेक ले लें.
2: इट्स 10:22.
3: वी अनलॉक्ड गवार फॉर यू. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, QuickMart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
4: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
5: The Joshis proudly presents Once More Ni Virasat, an unforgettable evening of Gujarati Lok Geet, poetry and timeless melodies featuring renowned poet Ankit Trivedi, folk music maestro Dhruvish Shah and melody queen Anal Vasabda. Saturday 20th June from 6 p.m. at Jalaram Auditorium, Nairobi. Tickets from 2,500 shillings. Call 0722-417-153.
3: East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: और सर हम बात करते हैं अश्विन दोषी साहब के साथ। कल ही लंदन से कोई नहीं, यहाँ से भी कोई याद कर रहे थे अश्विन दोषी। वेलकम जी जी।
1: थैंक यू जी। ये गाना सुनाने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। ये फिल्म हम लोग से आपने लिया है।
0: हम लोग
1: हाँ, और 1951 में रिलीज हुई थी।
0: हाँ,
1: जिसमें नूतन सज्जन श्यामा और बलराज साहनी।
0: वाह क्या कास्ट है।
1: क्या कास्ट थी और स्टोरी बहुत बेहतरीन थी। हाँ, हम लोग मीन्स बस्ती के लोग की स्टोरी थी।
0: अच्छा ओके, बस्ती के लोगों से। क्या बात है।
1: उसका टाइटल था हम लोग।
0: हाँ हम लोग ओके।
1: हाँ, और म्यूजिक दिया था रोशन रोशन साहब ने।
0: हाँ,
1: और फिल्म हिट हुई गई परम जी। और सभी गाने सभी गाने पॉपुलर हुए और फिल्म को हिट बना दी।
0: वाह क्या, मैंने तो हम लोग के बारे में कम ही सुना हुआ था, तो आपने बताया है तो
1: 1951 की वन ऑफ सक्सेसफुल मूवी थी।
0: अच्छा वाह क्या बात है, बहुत अच्छे।
1: थैंक
0: यू अश्विन दोषी। समिन आप कह रहे थे ना, तो अश्विन दोषी आ गए हैं। अभी मुनीर जो रोज़ाना समिन आपको भेजती हैं कितनी ब्यूटीफुल कहावतें वगैरह शायरी, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप भी उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। सेहत का कोई ना कोई मसला होता रहता है, तो बस आराम कहते हैं डॉक्टर्स के करो, और फिर ऑफकोर्स फिजियोथेरेपी वगैरह तो काम चला रही हैं मुनीर। लेकिन देखें समिन, हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर वो भेज देती हैं हमें, और अपने साथ समिन जब आपके ख़ानदान वाले हों तो तकलीफ़ भी कम हो जाती है। बेटा बेटी और दामाद और नवासा आए हुए हैं देखने मुनीर को किसुमू में। गेट वेल सून मुनीर। और यहाँ पर कौन है, नीला शेठ। नीला शेठ हैं, उनकी बात सुननी है
2: जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको और सभी लिसनर्स को जुम्मा मुबारक। और आपने आज पायल या बजा के मेरा दिल खुश कर दिया। सच्ची मेरा अंदर से दिल एकदम खुश हो गया, क्योंकि ये मेरा पैशन है। और दूसरा कि जो गवार में अभी अपने किसी ने बोला, वो मनोज कुमार नहीं, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला थे। नीला शेठ, थैंक यू, बाय।
0: नीला शेठ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ऐसे ही नहीं लिख देना, पहले वेरीफाई करें। अभी नीला शेठ ने कहा कि जो कहा है मनोज वो नहीं थे, सो प्लीज़ अपनी इंफॉर्मेशन को देख कर, ताकि कोई आपको करेक्ट ना करे।
3: प्रवीण जी सबको मुबारक, गुड मॉर्निंग। अभी आपने जो हृदय आर्टिफिशियल हृदय की बात की, फ्रांस ने साइंटिस्ट ने ढूंढा है, तो अभी एक गुजराती में पिक्चर आई थी अभी रिसेंटली दबकारा करके, उसमें आदमी का हृदय वो ट्रांसप्लांट करने का था, ने कर दिया। अभी ऐसे हुआ कि पहले वो एकदम घमंडी था, ऐसे था, अभी हृदय ट्रांसप्लांट किया तो नरम आदमी का हार्ट मिला उसको, तो उसका सब परिवर्तन हो गया। तो ये आर्टिफिशियल हार्ट में ऐसे हो सकता है, होएगा कुछ? अब ये बोलते हैं हृदय परिवर्तन हो गया तो आर्टिफिशियल हार्ट में होएगा। दिनेश शाह,
0: क्या बात है दिनेश, व्हाट अ क्वेश्चन। समझ जब अभी अभी कहा कि फ्रांस में एक ऐसा दिल बना लिया है फ्रांस ने, मस्नूई दिल, और जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। तो अभी दिनेश कह रहे हैं जब भी एक दिल किसी के किसी और को दिया जाता है, डोनर का दिल, तो कहते हैं कि उसमें तब्दीली आ जाती है उसकी शख्सियत में। अगर वो बहुत संजीदा था और जो डोनर था वो बड़ा चुलबुला था, तो इसमें भी वैसा बदलाव आ जाएगा। तो ये मसनूई, हाँ सब मसनूई लोग, वैसे भी समिन लोग कैसे बन गए हैं आजकल, तो जी दिनेश मुझे लगता है सब मसनूई हो जाएंगे आर्टिफिशियल। आपको आर्टिफिशियल बनने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप कुदरती आर्टिफिशियल होंगे। वंदनीय परवीन जी हम जुड़ चुके हैं बेमिसाल अंदाज से लंदन से, भरत गंगाराम। और अब देखें कि कोई पायल बाकी है कि नहीं है।

0: What beautiful songs, Samin Payal par kamal ke gaane hain.
1: रवि जी, चुम चुम बाजे पायल गोरी, ये गाना फिल्म हम लोग का है, 1951 की मूवी है, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है, उसके उदय कुमार ने लिखा है और जिसकी धुन रोशन ने बनाई है. ये गाना श्यामा पे फिल्माया गया है, उसके साथ बलराज शानी भी ये मूवी में काम कर रहे थे. गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया.
0: और ये थे प्यार अली भाटिया. रूपल क्या कहती हैं कि वॉट अ जेम, छम छम छम बाजे पायल मोरी, हर्ड आफ्टर सो मेनी इयर्स. जी समीन, मैं इतनी जल्दी जल्दी गाने रिपीट नहीं करती. एंड प्रेयर्स फ्रॉम फॉर मुनीर फ्रॉम द हार्ट. बहुत शुक्रिया रूपल. एमएल विश्वकर्मा कहते हैं, मैं कोट ऑफ द डे फ्रॉम जापान, इफ यू मिस अ बस maybe you avoided an accident, if you got rejected maybe you are saved from the wrong place. Bilkul aise hi sochna chahiye, phir zindagi khushgawar hai. Kokila, Mrs. Kokila from UK kehte, Parveen ji Juma Mubarak to you and to all the listeners. We are getting good knowledge from you, the best presenter. And God bless you. You too, Kokila from UK. बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुआओं के लिए. और समीन, वो मैं कह रही थी ना कि मुझे बहुत करते हैं, सबको अमेज करते हैं सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी. तो 5 ट्रॉफीज इनके नाम हो गई हैं, इस खिलाड़ी के नाम. मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर, ऑरेंज कैप मिल गई, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन रिसेंटली, emerging player of the season super, और most sixes बनाने वाला छक्के. तो सामने वैभव सूर्यवंशी को आप जानते हैं आजकल लोग क्या सवाल करते हैं. वो ये सवाल नहीं करते, फल्ला ये आपकी ताकत कहाँ से आती है, क्या करते हैं आप, कहाँ ट्रेन करते हैं, कौन आपका मेंटोर है, ये वगैरह वगैरह नहीं. वो पूछते हैं कि आप रोज़ाना कितना दूध पी लेते हैं. How much milk do you drink daily?
2: Bangla Bollywood hits and ballads to sing along with.
3: East FM.
2: Kenya's premier
3: Asian mix.
2: All the great songs that make your day.

और देखते हैं कि शाबिया और हाँ जी हाँ शाबिया ही हैं. आज क्या लिखा है. गुड मॉर्निंग मैडम जी, टेल यू इवन योर गिफ्टेड वॉइस, सर्टन पीपल आर बोर्न विद अ गिफ्ट डियर. सूर्यवंशी इज बोर्न गिफ्टेड एंड इज टैलेंट इन स्पोर्ट्स इज ब्लेस्ड. बिल्कुल शाबिया, ये बात आपने कही है कि ही इज़ ब्लेस्ड. अब अदरवाइज इतना कुछ वो ना कर पाता. सिर्फ कितनी भी आप ट्रेनिंग करवा लो किसी से, वो इन हाइट्स को रीच नहीं कर सकता ये जो सूर्यवंशी कर रहा है. तो वो कह रही है ही इज़ ब्लेस्ड. शाबिया थैंक यू. समीन आगे जो मैंने आपको सुनाना है, सैड गाना है मुकेश का. तो समीन रिसेंटली सैड म्यूज़िक पर थोड़ी सी रिसर्च की किसी ने, किसी की टीम ने, कि अगर आप उदास होते हो, आप थोड़े मूड में नहीं हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े सैड हैं, उदास हैं, परेशान हैं, तो उदास और सीरियस गाना सुनकर आप ज़्यादा उदास

और मंजू डगर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, दोनों दोनों के नाम आपने दे दिए। और भूपी पटेल फ्रॉम किसुमू, आपने एंजॉय किया है वो नंबर। और रूपल, करेक्ट आंसर, वंडरफुल। अब यहाँ पर आपने कहा है लारा दत्ता, नहीं, द मेल इज़ करेक्ट लेकिन लारा दत्ता नहीं है, कल्पना, वो करेक्ट कर लें। मैंने कहा था इनका भी नाम रिपीट होता है, जैसे कादर खान था, मैंने कहा इनका भी नाम इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट, दो वर्ड्स हैं एंड द लेटर इज रिपीटेड। और नहीं, इट्स नॉट नीलम, नो, यस सर, वंडरफुल, बहुत अच्छे। आपने फिल्म का भी नाम बता दिया है, जैसे कि मंजुला गोरसिया ने भी बता दिया था कि फिल्म ये है। अमीर अली राणा, एक करेक्ट है मेल, लेकिन इट्स नॉट पद्मिनी कोलापुरी एंड इट्स नॉट मंतिकाना, नहीं, मंदाकिनी, नो। और यहाँ पर हैं लक्ष्मण सिंह, आपने कहा है कि अनीता राज है, फिर करेक्ट कर लिया, वेल डन लक्ष्मण सिंह, आपने सही जवाब दे दिया है। अमीना, करेक्ट आंसर, बोथ आंसर्स, बहुत अच्छे। उमर फ्रॉम जर्मनी, जुमा मुबारक टू ऑल योर लवली लिसनर्स, बहुत खूब। समय पहले ये सुनते हैं, चंदा पे हमने कुछ गाने रखे हैं।

0: और मंजुला गोरसिया ने कहा है कि आपने नहीं बताया कि एक साल हो गया समिन वो क्रैश को, जो विमान क्रैश हुआ था गुजरात में और उसमें इतने लोगों की जान गई थी, उस पर जो रिपोर्ट है वो फाइनल रिपोर्ट अब दे रहे हैं समिन। इतनी ज़्यादा थियोरीज हैं कि क्या कारण था, स्विच ऑफ, एक स्विच, दो स्विच इकट्ठे थे, एक क्यों ऑन हो गया, कहते हैं किसी ने नहीं किया, पायलट एक दूसरे को पूछ रहे थे तूने किया, वो ने, उसने कहा मैंने नहीं किया, कैसे हो गया किसी को पता नहीं चलेगा, इतनी जाने चलेगी। मंजुला बहुत शुक्रिया, सभी को अफसोस है, आप ज़रूर उनके लिए दुआ करें मरने वालों के लिए। ये जो एक्ट्रेस है जिसका नाम आप मुझे बता रहे हैं, शी मैरिड अ कमर्शियल फोटोग्राफर शांतनु शोरे एंड शी स्टेज इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शी हैज़ ऑल्सो बीन लिविंग इन अ सबर्ब इन पुणे महाराष्ट्र। अच्छा, वेरी गुड, ये मंजुला गोरसिया ने हमें इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द एक्ट्रेस, तो अभी आपको उसका नाम भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। बिंदु, आपने कहा है कि ये करिश्मा कपूर है, नहीं, लेकिन मेल करेक्ट है बिंदु आपका, रीना रॉय करेक्ट नहीं है, और रोशन कांजी आपने जुमा मुबारक कहा है, गोविंद, अच्छा, जया प्रदा नहीं है ओके, करेक्ट आंसर नहीं है, अमीर अली राणा बिल्कुल सही, दोनों के नाम आपने दुरुस्त दे दिए हैं। फातिमा शमून, आपने एक्ट्रेस का नाम दे दिया जबकि वो बहुत मुश्किल लग रहा था लिसनर्स को, वो आपने बिल्कुल करेक्ट दे दिया है, लेकिन जो मेल है वो नहीं आपको पता। अब आप इंजॉय कर रही हैं प्रोग्राम, सो गुड टू हियर दैट, और नीला शेठ दोनों राइट है आंसर। रसीला कहती हैं कि ब्यूटीफुल चंदा रे मोरी पत्तियां ले जा, कमाल का गाना, और आंसर मिल गया है किसको, बिल्कुल कल्पना, आपके दोनों करेक्ट हैं, अभी दोनों नाम करेक्ट। हाँ, मैंने अभी अभी कहा है अमीर अली राणा कि आपने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए, ब्रेक का समय आ गया है।
1: It's 12:19.
2: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
3: Our client in the manufacturing industry is seeking to recruit a production technician, a technical certificate or diploma in mechanical, electrical or industrial engineering or diploma in technology is highly desirable, and 1 to 2 years of experience working as a machine operator within a manufacturing, assembly or industrial processing environment is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
4: Ajala Mobile is selecting professional listeners. If you're mature, trusted and able to listen without judgment, this is a paid opportunity for you. Visit myjobsinkenya.com to apply.
2: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
5: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
6: The Joshis proudly presents Once More Ni Virasat, an unforgettable evening of Gujarati Lok Geet, poetry and timeless melodies featuring renowned poet Ankit Trivedi, folk music maestro Dhruvish Shah and melody queen Anil Vasabda, Saturday 20th June from 6 p.m. at Jalaram Auditorium, Nairobi. Tickets from 2,500 shillings. Call 0722-417-153.

Manjula Vishwakarma कहती हैं कि this is Reena Roy and Rishi Kapoor, no. दोनों wrong हैं. बिंदु आपने कहा है Raveena Tandon, no. और समीर वो थे कौन? एक थे गोविंदा जी, क्योंकि अभी उन्होंने एंट्री की थी अपनी, तो शायद आप पहचान नहीं पाए. वो गोविंदा थे और उनके साथ किमी कटकर जी. किमी कटकर आजकल कहाँ रहती हैं? कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में. शी मैरिड अ फोटोग्राफर एंड वहाँ जाके बस गई. वो महाराष्ट्र की थी शायद, तो इतना हमें पता. अगर किसी के पास किमी कटकर की और मालूमात हैं तो ज़रूर हमें भेजिएगा.

नन्ना सा मुन्ना हमारा, बहुत ही अच्छा गाना। और समय मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जैसे बेमिसाल में पहली बार मैंने आपको सुनाया हो। और इसी तरह का ब्यूटीफुल आगे गाना

0: और अश्विन ये मेल वॉइस में भी है ना?
1: यस, मुकेश का, मुकेश का गाया
0: हुआ, मुकेश का जी
1: जी, ये लता ने गाया है और नूतन, नूतन के, नूतन जो हीरोइन थी, ये फिल्म थी सरस्वती चंद्र।
0: अच्छा, ये किताब थी एक सरस्वती?
1: यस, ये गुजराती, यस, इन फोर पार्ट्स, परवीन जी,
0: फोर, माय गॉड,
1: यस, इट वाज अ क्लासिक, आई एम नॉट रेड, रेड इन इन शॉर्ट फॉर्म, बट नॉट द ओरिजिनल, मैंने नहीं पढ़ी है।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो 19th सेंचुरी में लिखी हुई थी।
0: So Saraswati Chandra is the main hero, the main character.
1: Okay. Main character. Yes. Okay. Yes. उनके पर ये फिल्म बनाई, हिट हुई, ये म्यूजिक था, सभी म्यूजिक थे कल्याण जी आनंद,
0: कल्याण जी आनंद
1: और गीत लिखे थे हिंदी वर्ण ने।
0: अच्छा, ओके,
1: और सभी गाने पर बहुत पॉपुलर हुए थे।
0: तो हीरो कौन थे? हीरो कौन थे?
1: हीरो वन टाइम हीरो थे वो मनीष।
0: अच्छा, मनीष, ओके,
1: और कि उनका क्या हुआ मुझे मालूम नहीं
0: है। ओके, या हम ये भी फाइंड आउट कर रहे हैं कि किमी कटकर का क्या हुआ, अब इनका भी फाइंड आउट करना पड़ेगा।
1: यस, फिल्म बस नूतन की वजह से ये बहुत चली, और म्यूजिक पर भी जी,
0: दैट्स इट,
1: या दैट्स इट, एंड स्टोरी ऑफ कोर्स वाज अ क्लासिक, एज आई सेड, गुजराती नोवेल।
0: ऑफकोर्स, क्या बात है, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। अश्विन दोषी थे, और अब चलते हैं, हमारे साथ और भी हैं, और आप हैं मनहर पटेल।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। मनहर पटेल किसुमु, गुजराती का गाना सरस्वती चंद्र का, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल to listening in a slow motion. Thank you, Manar Patel from Kisumu.
0: क्या बात है, सरस्वती चंद्र का, लता का, मुझे मुकेश का ज़्यादा पसंद था, पर खैर, समझ में, आपको बताती हूँ, एक हीरो फिल्म के हीरो जिसने उसूल पसंदी का, अच्छे इखलाक की, समझ के, उनके राइट और रॉन्ग की कितनी वो कर सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उस पर एक छोटी सी खबर है, मैं देती हूँ थोड़ी देर के बाद।

और समय शत्रुघ्न सिन्हा की बात करनी है। इनको बहादुर आप समझते हैं, हमेशा से मैं भी समझती हूँ, लेकिन इतने दलेर, यूनो सच और हक पे डट जाने वाले, ये नहीं सोचा था। तृणमूल कांग्रेस टूट रही है, आप जानते हैं समय भारत में ममता बनर्जी इसकी सरबराह थी, तो बेशुमार अराकीन जो इस पार्टी में पहले थे और बड़े स्टॉलवर्ट्स माने जाते थे, वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो बेचारी ममता बनर्जी बहुत अलग तन्हा दिख रही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में आई ये खबर कि वो भी छोड़ रहे हैं पार्टी, वो भी गद्दार हैं, तो वो नहीं रह रहे। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं ममता बनर्जी को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? समय जहाँ लोग एहसान, सियासत में, राजनीति में एहसान तो सभी भूल जाते हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि 2019 चुनाव में हार गया था, लेकिन ममता मेरे साथ खड़ी रही, मुझे इनकरेज करती रही, हौसला देती रही, और एक बार फिर लड़ने का ममता बनर्जी ने मुझे मौका दिया था। तो कहते हैं कि जो मुश्किल के वक्त में मेरे साथ रही हो, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? सो ग्रेट, आई मीन हैट्स ऑफ टू शत्रुघ्न सिन्हा।

चंद्रिका वसंत गोसाई, ऑफ कोर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है। और अमीर अली राना, जो आपने भेजा है एक्चुअली कि आप जो काम नहीं कर सकते कुछ और पीकर, वो अगर शराब

0: बिल्कुल, एक मुलाकात जरूरी है सनम. दिस वाज स्पेशली गोइंग आउट फॉर दिलीप ऑल द वे इन एल्डोरेट. दिलीप, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल फ्रेंड एंड अ ग्रेट लिसनर ऑफ ईस्ट एफएम. एंड दिस वाज योर रिक्वेस्ट. आई होप यू एंजॉयड योर सॉन्ग एज मच एज आई एंजॉय योर कंपनी.
1: बॉलीवुड एंड बियॉन्ड.
0: ऑलराइट, सो एज यू नो बॉलीवुड, ऐसे जो स्टारडम हमने देखा है एक्टर्स का पिछले पहले के ज़माने में, जैसे राजेश खन्ना का क्रेज़ या मिथुन चक्रवर्ती का या जितेंद्र ले लो या तो

That's playing for News to Fame, Kenya's premier Asian mix. This is The City Lights with Vishal. And right now, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला है क्लू दे दो, क्लू दे दो. अभी तो क्लू दिया था, बट अगेन मैं आपको क्लू एक बार फिर देता हूँ. एंड टुडेज मूवी जो ट्रांसलेट चैलेंज है हमारा, एंड यू हैव इट्स अ वन वर्ड मूवी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश इट साउंड्स लाइक दिस. डिज़ायर. डिज़ायर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे या संस्कृत में क्या बोलेंगे? सो दिस मूवी रिलीज इन द ईयर 1999 एंड इट स्टार्स अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित, सैफ अली खान, अमरीश पुरी, परेश रावल एंड रीमा लागू इन द लीड रोल्स. सिंपल सी चीज़ है. माधुरी दीक्षित फॉल्स इन लव विद अक्षय कुमार हु इज़ पायलट. ये आपकी आखिरी क्लू. अक्षय कुमार इज़ अ पायलट इन दिस मूवी एंड माधुरी दीक्षित फॉल्स इन लव विद हिम. बट देन सैफ अली खान की एंट्री होती है जहाँ पे इज़ अ फैमिली फ्रेंड एंड अमरीश पुरी साहब डज द रेस्ट ऑफ द थिंग एज अ विलन ऑफ द मूवी. कौन सी मूवी है? आपको एक और क्लू दिया था. इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग, जो सॉन्ग सबको पसंद आता है एंड दैट इज़ नन अदर देन इट साउंड लाइक दिस. मेरी आवाज़ चलो आई नो कि बहुत अच्छी है बट अभी नहीं गा पाऊँगा. And the song starts like this. Ab tere dil dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot. Kaun si movie hai ye? In Hindi. You can send me a message on 07 01 106 106.